0: ॐ स्वस्त्यास्तु
1: जिंगे ॐ स्वस्त्यास्तु ॐ स्वस्त्यास्तु
0: रबोट रबोट पाक देवी जानो
1: जिंगे
0: बुए कबीबे नॉइ पानोचिंग इता बुलो देते निसारी
1: ॐ स्वस्त्यास्तु
2: ॐ स्वस्त्यास्तु
1: Ingi rajang siang niki
2: sampun. Om swastiastu lima.
0: Nah, panglan iki dewa panglan patut mancung.
2: Ingi. Ingi dia melajah megendeng dek beli mrate sareng kali.
0: Ingi. Ingi ring melajah sareng.
2: Om swastiastu.
0: Swastiastu.